में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा